0: विंशतिः पुरस्काराः, त्रयः संत कबीर पुरस्काराः, एकविंशतिः च राष्ट्रिय पुरस्काराः समर्पिताः। अस्मिन् अवसरे भारतस्य समृद्ध न्यासस्य सम्माननाय चतस्रः स्मरणीय प्रैषचटिकाः अपि विमोचिताः। राष्ट्रपतिः देशस्य वस्त्र शिल्पिभ्यः उद्यमेभ्यः छात्रेभ्यः अथ अस्य क्षेत्रस्य समस्त जनसमुदायाय च शुभकामनाः प्रदत्तवती।
1: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकथा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर न्यगादीत यत् पाकिस्तान देशेन सह भारतस्य संबंधाः केवलं आतंकवाद मुक्तौ एव अग्रेसारयितुं शक्यन्ते। अद्य लोकसभायां एकस्मिन् लिखितोत्तरे डॉक्टर जयशंकर स्पष्टीकृतवान् यत् पाकिस्तान अद्यापि अतिसीम्नि भारतं विरुध्य आतंकवादं अस्त्ररूपेण उपयुङ्क्ते। अद्य भारतस्य उत्तर पश्चिम भागेषु अतिवृष्टिः अजायत। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य नवदिल्ल्यां मध्यमतः तीव्र वृष्ट्यै पीतवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। कोझिकोड़े, कन्नूर, वायनाड, कासरगोड क्षेत्रेषु साम्प्रतं रक्तवर्णपरा संचेतना प्रख्यापिता। अथ क्रीडा वार्तासु। भारतस्य ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंद अमेरिकादेशे आयोजितायां ग्रैंड चेस टूर सेंट लुईस रैपिड एंड ब्लिट्ज इत्यस्यां प्रतियोगितायां विजयं प्राप्तवान्। विंशति वर्षीय प्रज्ञानंद पेनल्टी मेट इत्यस्मिन् चक्रे उज्बेकिस्तानस्य ग्रैंडमास्टर जाबोखीर सिंदारोव इत्यनेन सह स्पर्धां समीकृत्य विजयं सुनिश्चितवान्। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य क्रीडिके रक्षिता रामराज अथ अश्मिता चालिया च अद्य दक्षिण कोरिया देशस्य आसन नगरे आयोजितायाः कोरिया मास्टर्स इत्यस्याः स्पर्धायाः महिलैकल वर्गे उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अलभेताम्। अश्मिता चालिया जापान देशस्य क्रीडिकां हिना अकेची इत्येतां पराजित्य उपान्त्यचक्रे प्रवेशम् अकरोत्। इति वार्ताः।